आओ गुरु प्यारी सत्संग जी, अनदर चांस, अनदर अपॉर्चुनिटी टू डू सत्संगत, साधसंगत, एन अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट, टू लिसन एंड टू इम्प्लीमेंट. So in today's Dhwan, we're going to focus on Simran, a focus practice for the mind, a practice that can eliminate thoughts, thoughts of negativity, anxiety, depression.

सदते बांध बांध कटवाए खोपरिया लुहाइया चरखड़िया दे चढ़ी आ रिया ना चराएगा गुरद्वारिया की सेवा ली कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं आ रहा सिखी केसा सवासा संग नभाई

नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग नमो सदा सच्चिदानंद सर्वं परनाशी अनुपे अरूपे समस्तुल निवासी

के सर्वत्र गौन है, के सर्वत्र पौन है, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र राज है, के सर्वत्र साज है, के सर्वत्र दीन है, के सर्वत्र लीन है, के सर्वत्र जाहो, के सर्वत्र पाहो, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र काल है, के सर्वत्र पाल है, के सर्वत्र हंता, के सर्वत्र गंता, के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र काज है, के सर्वत्र राज है, के सर्वत्र सुख है, के सर्वत्र पोख है, के सर्वत्र त्राण है, के सर्वत्र प्राण है, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र मान्य है, सदैव प्रधान्य है।